0: Are you looking for a meaningful way to give back to your community? MCCSA is looking for volunteers who are happy to assist elderly people in aged care facilities or their homes, helping to reduce loneliness and social isolation. It is a perfect volunteering opportunity for people working, studying, or retired. With visits of 1 hour per fortnight, you can really make a huge difference for somebody living near you. Call us on 8213 4607. Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government, Department of Health and Aged Care.
1: Did you know community radio stations like 5EBI operate under a broadcasting licence for a reason? Our licence allows us to serve Adelaide's multicultural communities with programs that inform, educate and entertain in many different languages and from many different cultures. As a licensed community broadcaster, 5EBI follows strict standards set by the Australian Communications and Media Authority, ensuring balanced programming, community access, local participation, and responsible broadcasting. That means when you tune in to 5EBI, you're hearing a station that exists for the multicultural community, not for profit. Your voices, your stories, your music, and your culture all have a place here. Community radio licences help protect diversity on the airwaves and ensure communities across Australia continue to be heard. Thank you for supporting 5EBI, Adelaide's multilingual community radio station. 5EBI, broadcasting for our communities.
2: Can you imagine a child not wearing good shoes to school? Do you understand how important a good backpack is to attending school? Struggling families with a parent in prison need your help. Help a child restore their dignity and not truant. Help a child to stay in school to complete their education. Please sponsor a child today. Go to secondchances.org.au to support a child to stay in school. Not their crime, not their fault.
3: You're listening to 5EBI FM, 103.1 EBI World in Digital. Time now is 2:30.
4: The MCCSA is welcoming you to our Community Voices radio program, representing our diverse communities at 5EBI FM every Tuesday from 2:30 to 3 p.m.
5: Darama Kosadi Otori, Sidik MCCSA.
6: Marhaba, ismi Hana.
7: Apa kabar?
8: Hello, ni Florin Volte.
9: Ake habari asubuhi, jina langu ni Judy kutoka MCCSA.
10: Aibowan, Marhaba.
11: Namaskar. Aap sabhi sarotaon ko aadar abhivadan hai. Main hu Dayavati Pandey from 5EBI 103 FM Multicultural Radio Hindu Sangam Channel se. Radio par aap sun rahe hain Sambad. मैं आभारी हूं MCCSA का जो मुझे यह अवसर प्रदान किया. थैंक्स यू फॉर MCCA प्रोवाइडिंग मी विद दिस अपॉर्चुनिटी. आज हमारे साथ एक ऐसे लेखक जिनकी कलम ने समंदर पार बसे एक हर भारतीय की धड़कन को शब्द दिए हैं. वो एक वैज्ञानिक हैं और एक प्रवासी साहित्य के एक नए हस्ताक्षर हैं. डॉक्टर प्रेम द्विवेदी जी, आपकी किताब अनलाइक इंडियन माइग्रेंट ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भारतीय प्रवासियों बाकी दुनिया में अलग क्यों हैं. तो डॉक्टर प्रेम द्विवेदी, हिंदू रेडियो परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है. आप अपना अमूल्य समय निकालकर आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसलिए आपको बार बार धन्यवाद.
12: थैंक यू दयावती जी. It's nice to be here and I'm really really happy to be here. And आपने जो हमें एक अवसर दिया है अपने प्रोग्राम में बोलने का और अपनी बुक के बारे में बताने के लिए, ये आपने जो कहा है कि ये बुक अनलाइकली क्यों है, तो अनलाइकली का मतलब मेरा ये है कि अनलाइकली मीन्स अलग नहीं है. मैं एक इंडिया में उत्तर प्रदेश के में एक डिस्ट्रिक्ट है हरदोई, उसमें से एक छोटा सा विलेज है हथियाई, उस गांव से आता हूं जहां से ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड आने की संभावना बिल्कुल नहीं थी, और इसलिए मैंने इस किताब का नाम अनलाइकली रखा।
11: तो ये बहुत सोच कर किए हैं, और सच बताएं कि हम भी एक बनारस की हूँ लेकिन एक छोटा सा गांव से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई प्राउड कि उत्तर प्रदेश और हमारी भाषा हिंदी है और हम इसको जीवित रखेंगे। तो हर हर महादेव, बाबा विश्वनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। यह सावन का महीना है, श्रावण मंथ जो है भगवान शिव का माना जाता है, और इस महीने में हम लोगों का पूरा ही पवित्रता से पूजा पाठ सारी, बहुत सारे त्यौहार होते हैं इस ने, अब कल नाग पंचमी थी, तो हम सोचेंगे कि और सभी जो श्रोता है उनकी भी मनोकामना भगवान पूरा करें। और भगवान, जैसे काशी की मैं हूँ तो मुझे जब तक काशी का वर्णन ना करूँ तो मेरा मन लगता है कि अधूरा है सब काम। और भगवान सबके गंगा जैसी पवित्रता सबकी मन भावनाएं रहे। तो हम पहले हम गणेश वंदना करते हैं और फिर थोड़ा सा शिव का वो करेंगे स्तुति। जब तक हम शिव जी को भगवान को मनाएंगे नहीं तब तक मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी, तो हम शुरू करेंगे। तो गणेश वंदना मैं स्वयं करूंगी, फिर करेंगे इस उस पे आएगा इस श्लोक का, बारह द्वादश लंगा का। तो हम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा सर्वकारेषु सर्वदा सर्वकारेषु सर्वदा। तभी शिव स्तुति सुन लेते हैं।

0: द्विवेदी जी, हम अब चर्चा करते हैं आपके लाइक जो बुक है किताब माइग्रेंट पे लिखे हैं, तो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको कोई इतराज तो नहीं होगा?
1: हम इसी के लिए आए हैं, आपको जो भी क्वेश्चन करेंगे हम आपका अच्छे से अच्छा जवाब देने की कोशिश करेंगे।
0: और चलिए मैं शुरू करती हूँ फिर। आपकी किताब अनलाइक

0: था उत्तर प्रदेश की कैपिटल राजधानी, तो हमारे लिए ये
1: यहाँ आना
0: डिफरेंट था। हम कोई प्लान्ड फॉरेन जाने का नहीं हुआ है ना इसमें, ना इसमें हमने हमारे अंदर एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा थी कि हम एजुकेशन की तरफ हमारा झुकाव था, जो हमारे पिताजी ने कहा कि एजुकेशन इज़ द वे, एजुकेशन इज़ द वे टू गो आउटसाइड और एनी वेयर इन द वर्ल्ड। यानी एजुकेशन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसकी वजह से आप कहीं भी पहुंच सकते हो,
1: इसको तो कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता, यही चुरा यही, नहीं सकता, डाकू ले नहीं सकता। नहीं,
0: यही वो कहते थे कि तुम जितने भाई बहन लोग हो और एजुकेशन पर तो हमारा पैसा खर्च हो रहा है, और कुछ भी पढ़ाई कर लो, इस चीज़ को आपको कोई नहीं छीन पाएगा, ना आपकी खेती बढ़ जाएगी, आपका घर बढ़ जाएगा, लेकिन ये नहीं बढ़ सकता। नहीं। तो वो चीज़ हमारे दिमाग में रही कि एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। फिर उसके आगे हमने उस एजुकेशन को दिमाग में रख के मोटिवेशन रखा अपने, कभी कभी डिमोटिवेशन भी होता था, लेकिन अपने दिमाग से कई चीज़ें
1: एकाग्रता
0: रखी और कई चीज़ें जो है कि अपने तरीके नए नए ढूँढे कैसे मोटिवेशन किया जाए ना, तो इस तरीके से हुआ। यूनिक इसलिए है ना,
1: आपका परिश्रम लगा, आपने सारा पूरा इन्वेस्ट जो अपनी ताकत लगाया, माइंड लगाया, पढ़ाई में लगाया। ये हमारे उत्तर प्रदेश की पूरी देन है। मुझे गर्व है कि वहाँ के लोग स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। थैंक यू फॉर, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। तो हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो आपको उसका देखिए क्या बताते हैं आप। इस किताब का बीज आपके मन में कब पड़ा? कोई एक ऐसी घटना या मुलाकात जिसने कहा कि अब इस पर कुछ लिखना ही है हमें?
0: तो इसका बीज जो है बहुत दिन पहले पड़ा था। जैसे जब मेरा 50th बर्थडे था, तब बच्चों ने, हमारे बच्चे आकृति और प्रखर ने कहा कि डैड आप अपनी स्टोरीज बताओ पहले लाइफ की ना, और उन स्टोरीज से उनको क्या करना था, उनसे अपनी स्पीच में इंक्लूड करके और उसको फिर एग्जैजरेट करके या जैसे भी है
1: बोलना था,
0: ह्यूमरस वे में उन्होंने बोलने की कोशिश करते थे ना। फिर जब उनको स्टोरी उन्होंने देखी तो कहती आपकी स्टोरीज में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, क्यों नहीं आप इस पर बुक लिखो ना। तो फिर उस चीज़ को हमने कंसिडर किया और फिर लिखना शुरू किया। काफ़ी दिन प्रोक्रेस्टिनेशन रहा, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा मैंने तुरंत लिखना शुरू कर दिया। फिर 31 मई 2022 से हमने लिखना शुरू किया और मुझको पूरे 4 साल लग गए इसको लिखने में ना।
1: अच्छा, तो मैंने सोचा 3 वर्ष लगा।
0: नहीं, आप, लग आपने 3 वर्ष कहा था लेकिन नहीं, 4 साल लग गए। 4 साल में एक वीक आप कम मानिए ना। मैंने 25 मई को अमेजॉन KDP पे हमने पब्लिश करी थी और फिर लोगों ने लाइक की और
1: बहुत पसंद कर रहे हैं,
0: और बेस्ट सेलर हुई बुक।
1: तो चलिए हम अब दूसरा क्वेश्चन, आप थोड़ा सा ज्यादा हमने क्वेश्चन पूछ लेंगे तो आपको कोई ऐसा नहीं लगेगा,
0: कोई अतराज नहीं है। मैं अपनी बुक लिखी है तो मुझे अच्छा लगेगा, करनी ही नहीं है ना।
1: तो आप लिखते समय 4 साल हो गया आपका, 4 साल सफर हुआ, तो सबसे ज्यादा रिसर्च किस देश के भारतीयों पर करनी पड़ी आपको? क्या भारतीयों पर ही करा या पूरे कम्युनिटी का जो बाहर से आए हुए हैं लोग? और सबसे ज्यादा क्या चौंकाने वाली बात पता चली?
0: एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको यहाँ पे, दिस इज माय ऑटोबायोग्राफी। तो मैंने दूसरे भारतीयों पर रिसर्च ही नहीं किया,
1: अपने
0: क्यों अपने पर रिसर्च किया कि अपनी सब डेट्स फिक्स करना कि जो मैं कहने जा रहा हूँ कौन सी स्टोरी किस समय हुई। तो मेरी रिसर्च थी कि मैं अपने फैमिली वालों से बात करना, अपने अपने भाई बहन से बात करना, अपनी वाइफ से बात करना कि ये जो हम डेट्स लिख रहे हैं तो उस पर रिसर्च
1: करेक्ट है हमारा,
0: करेक्ट है कि नहीं। तो हमें दूसरे भारतीयों पर कुछ रिसर्च नहीं करनी पड़ी क्योंकि दिस इज माई लाइफ स्टोरी ना,
1: तो मेरा अपना जीवन, जीवनी है हमारी।
0: Exactly.
1: अपनी जीवनी मैंने लिखा ना कि हम औरों की,
0: बट यह है कि मेरी जीवनी जो है
1: दूसरों को प्रभावित करेगी,
0: प्रभावित कर सकती है, क्योंकि ये जो है एक माइग्रेंट की स्टोरी है जिसमें हम एक माइग्रेंट जो है साइंस और मल्टीकल्चरल समुदाय को कैसे उनका कनेक्शन होता है, कैसे कनेक्शन जुड़ता है, कैसे हम मल्टीकल्चरल ब्रिज बनाते हैं, जैसे एक सभ्यता जब दूसरे सभ्यता से मिलती है तो उस तरीके की चीज़ है। लेकिन मेरी स्टोरी के साथ साथ ये मेरे बच्चों की भी कहानी है, मेरे दोस्तों की भी कहानी है।

0: और एक ऑस्ट्रेलियन बनने की कहानी है कि
1: यहाँ पे क्या क्या स्ट्रगल किया, कैसे आपने पाया, क्या किया
0: एग्जैक्टली, किस ने हेल्प करी। और तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ हैं, ये बड़े बड़े चैप्टर्स
1: जैसे हम विवेकानंद जी का पढ़ते हैं, भैया विवेकानंद जी का, उन्होंने जो स्ट्रगल किया, जो किया, कैसे वहाँ तक पहुँचे, कैसे उनको परेशानियाँ आई, कैसे, तो हम पहले अपने को समझें तो दूसरे को समझाएं।
0: एग्जैक्टली,
1: ये तो बहुत अच्छा आपने सो बात बताई इसके बारे में। तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखिए आपसे।
0: बिल्कुल,
1: किताब में आपने अपने संघर्ष और सफलता दोनों लिखे हैं।
0: हाँ,
1: कि कैसे
0: हाँ,
1: संघर्ष किया, हाँ, कहाँ से निकले। कोई एक ऐसी कहानी सुनाइए जो सुनकर और लोग के जो मदर फादर लोग हैं या जो बच्चे हैं उनके लगे कि कैसे, मतलब एक बार आंख भर आए कि कितना कष्ट उठाया, या जो आपने अच्छा पाया उससे उनकी खुशी मिलेगी और उससे जो है उनको कि कितना कष्ट आपने उठाया।
0: जैसे ऐसे कई मोमेंट्स आए जिंदगी में लिखते समय जिसमें मेरी आंख तो भर आई।
1: अब
0: हर एक का इमोशनल लेवल अलग अलग है। जब मैं 13 साल का था तब मैंने अपना घर या गांव छोड़ दिया था पढ़ाई जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए दूसरी जगह जाने के लिए, अपने ब्रदर के पास पढ़ करके कक्षा 9 और 10 में पढ़ना था जाके ना। तो उस समय आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट कि माई मदर वॉज क्राइंग और माई फादर वॉज स्टैंडिंग और कह रहे थे कि ही वॉज सेइंग कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, कोई इशू नहीं है। और मेरी मदर रो रही थी और लेकिन हमने जिसे कहते हैं ना दिल पे पत्थर रख कर के आप चल दिए, क्योंकि हमें था कि एजुकेशन इज़ द वे टू गो, और कोई तरीका नहीं है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का ना। तो वो मोमेंट हमें बहुत अभी भी हर हमेशा याद आता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मैं पुराने गाँव में पहुँच गया हूँ, मूवी की तरीके से चल रहा है दिमाग में, माइंड में चलता रहता है ना। तो दिस वॉज वन ऑफ देम। उसके अलावा बहुत सारे मोमेंट्स हैं, लेकिन आप जैसा टाइम आपको परमिट करेगा मैं आपको बहुत सारी स्टोरीज बता दूंगा।
1: तो आपने लिखा है
0: हाँ,
1: कि भारतीय प्रवासी हाँ, दो नावों पर सवार होते हैं जब आते हैं ना, इधर वहाँ छोड़ते हैं, एक तरफ विदेश और दूसरे तरफ अपना भारत और अपना घर परिवार। तो आप इस द्वंद्व को आप कैसे देखते हैं अभी?
0: ये एक्चुअली दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर आप हमसे पूछ रहे हैं, एंड यू नीड टू हैव अ सेपरेट पॉडकास्ट फॉर दिस वन बिकॉज, बट आई विल टेल यू दिस इज ये केवल मानसिक द्वंद्व है। फिजिकली आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं एंड मेंटली आप
1: उसको हम फाइट कर रहे हैं, इंटरनल फाइट
0: करते हैं ना। तो उसके लिए देखो कई चीज़ें करनी चाहिए कि ये द्वंद्व तो रहेगा हर हमेशा, लेकिन हमें अपने कल्चर को बना के रखना है। बट द सेम टाइम इन माई ओपिनियन दूसरे कल्चर की चीज़ों को भी सीखना है और एक ब्रिज बनाना है। हर एक कल्चर से डिफरेंट ब्रिज बनेगा, डिफरेंट तरीके से बनेगा, सिमिलर चीज़ें होंगी। तो जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ कि अपने इसके लिए कि साइंस के अलावा एज ए साइंटिस्ट वट एवर आई हैव टू डू इट एनी वे, बट उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे बहुत सांस्कृतिक जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ। उनमें जैसे शुरुआत से बच्चों को पार्टिसिपेट कराया, अगर अभी तो बहुत सारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हो गए हैं। शुरुआत में यहाँ पे केवल
1: दो
0: ऐसा था और एक और म्यूजिकल का था जो अभी बंद हो गया है, रसिक रंजनी कहलाता था, उसका मैं कल्चरल एडवाइज़र हुआ करता था।
1: अच्छा।
0: बच्चे प्रोग्राम करते थे, उसमें कई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई हम लोगों ने, तो उस तरीके चीज़ों में पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा भी जैसे जो हम ब्रिज बनाते हैं ये केवल कल्चर के अलावा बियॉन्ड भी जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चाहे आप कैंसर काउंसिल को डोनेशन करा रहे हो, चाहे आप RAH को थोड़े बहुत फंड्स डोनेशन करा रहे हो, चाहे बहुत सारी चीज़ें मैं आगे बता सकता हूँ। जैसे अभी करेंटली मैं इसमें हमारी बर्नसाइड काउंसिल है, उसमें मैं कोविड के समय से इन्वॉल्व हुआ था उसमें ना। कोविड में उनकी एक कंपेन चली थी कि नो योर नेबर्स, तो अपने नेबर को बुला के उनसे बात करो क्योंकि ह्यूमन नेचर है, इंटरेक्शन करना है आपको, और कोविड ने हमें रियलाइज कर करा दिया सबको, अब भले ही लोग भूलने लगे हों लेकिन बिना इंटरेक्शन के काम नहीं चलता है। तो उसमें जैसे मैंने उनको उस कंपेन को सपोर्ट किया जो बर्नसाइड काउंसिल की मुहिम थी आप कह सकते हो, और उन लोगों ने हमको पूरी स्टोरी डाली थी उन्होंने अपने उनका जो फोकस न्यूज़लेटर निकलता है, और फिर तो कई स्टोरी जो हमारी बर्नसाइड काउंसिल की उसमें हमारी ऑटोबायोग्राफी में हैं। तो अभी फिर हमने बर्नसाइड काउंसिल के जो चेयरपर्सन है मेयर हैं उन्होंने हमको कहा कि आप मेरे साथ और जुड़िए ना। अच्छा। तो अभी एक चैट विद द लोकल प्रोग्राम है तो उसमें मैंने जुड़ गया हूँ उनके साथ, और एक दो महीने से उसमें काम कर रहा हूँ। तो डिफरेंट तरीके से जो कल्चरल ब्रिज है हम बनाने की कोशिश करते हैं।
1: तो ये तो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन अब चलिए और एक क्वेश्चन पूछते हैं
0: आपसे। बिल्कुल आप पूछिए।
1: कि एक है, विदेश में जाकर कई लोग अपनी भाषा भूल जाते हैं और अपने बच्चों को भी नहीं बताते, तो आपकी किताब इस सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए क्या कहती है?
0: ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसमें आपका योगदान काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप हिंदी पढ़ाते हैं। जिस समय मैं शुरुआत के दिन थे तो उस समय हिंदी स्कूल नहीं हुआ करते थे, तो हम अपने बच्चों को घर पे पढ़ाते थे, और प्राइमरी स्कूल की जो बुक्स थी कछुआ और खरगोश की कहानी वाली उत्तर प्रदेश में चलती थी वो बच्चों को पढ़ाई हैं, और हमारे बच्चों को थोड़ा थोड़ा लिखना आता है मेरी डॉटर को, और लेकिन बोल सब सकते हैं ना, बोल सब सकते हैं
1: घर में ही, बोलना ज़्यादा अनिवार्य है,
0: बोलना ज़्यादा अनिवार्य है,
1: लेकिन हाँ पढ़ना लिखना भी आपने से क्या होता है कि अच्छा रहता है।
0: और इसके उसमें जैसे मैं आपका ध्यान इस पे अटेंड करना चाहूँगा या ऐड करना चाहता हूँ कि जो मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है अभी दैट इज़ इन इंग्लिश ओनली, और अमेजोन पर भी है और इंडिया में कई प्लेटफॉर्म्स पे है ना, और लेकिन अभी मुझसे उत्तर प्रदेश में के लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो,
1: तो मैं उसको इस समय
0: हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ, जिससे कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो रचित हुई चीज़ है, रचित की गई चीज़ जो है जो इंटरनेशनल उस पर इम्पैक्ट करेगी, और मुझे तो लगता है अगर दो चार बच्चे भी हमारी बुक से प्रेरित हो जाएंगे कि प्लेस नहीं डिसाइड करता है कि कहाँ से आप आते हैं, डजेंट मैटर, छोटे प्लेस से आते हैं आप फिर भी अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिंदगी में ना। तो अगर दो चार बच्चे भी मुझसे प्रेरित हो गए तो अब मैं समझूंगा कि मैंने जो चार साल लगाए दैट वाज वर्थ।
1: नहीं अच्छा है, उसे कुछ तो प्रभावित पड़ेंगे होंगे ना, 100% तो कोई नहीं कर सकता।
0: नहीं, कोई नहीं कर सकता,
1: 1% भी हो गया तो बहुत है। तो अभी आपने बता ही दिया, मेरा एक क्वेश्चन था कि कोविड के समय आपने क्या किया, तो आप बता दिए, लेकिन फिर भी मैं अपने क्वेश्चन को पढ़ूंगी क्योंकि बिना पढ़े रह ही नहीं सकती। तो कोविड के समय प्रवासी भारतीयों की जो हालत हुई क्या वो भी इस किताब का हिस्सा है?
0: है ना, थोड़ा पार्ट जितना मैं इन्वॉल्व,
1: अपना ही बता सकते,
0: क्योंकि मेरी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें मैं जितना इन्वॉल्व हूँ। कोविड के समय ही जब हमारे इंडियन स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे, जॉब नहीं था, तो उसमें अब मैं जैसे हमारे स्नेहल ठाकर हैं उन्होंने हमसे कनेक्ट किया, और हम लोगों ने उसी समय सनातन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया, उसमें हमने फंड्स इकट्ठा किए, कुछ लोगों से मांगे, और फिर बच्चों की हेल्प की जा करके कुछ लोगों ने जा करके उनको फूड पैकेज और ये सब चीज़ें डिलीवरी हुई ना,
1: तो
0: उस तरीके का काम दैट वाज वेरी गुड। एंड ये तो उसी समय जो हमने बताया बर्नसाइड काउंसिल का जो मुहिम चला कि
1: नो योर
0: नेबर, उनके साथ मैंने उनको उसमें पार्टिसिपेट किया, तो मैं समझता हूँ कि मेरा एक कॉन्ट्रीब्यूशन उस समय था।
1: तो आज क्योंकि हम लोगों के पास टाइम कम है और हम फटाफट क्वेश्चन पूछते हैं, और आप बताइए, आज हजारों युवा पढ़ाई और नौकरी के लिए ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जा रहे हैं, उनके लिए आपकी 3 सबसे जरूरी सलाह क्या होगी?
0: तो ये तो क्वेश्चन जैसे जो आपका हुआ कि जो इंडियन स्टूडेंट्स इंडिया में है ना,
1: हाँ
0: तो उनको एक तो
1: या आने को सोच रहे हैं
0: ना, तो उनको अगर जब सुनते हैं तो दो तीन एम्स उनको क्लियर रखने चाहिए। पहला एम तो क्लियर होना चाहिए, एग्जैक्ट उनका एम क्या है, why they are coming, they should be very clear, course उसके हिसाब से select करना चाहिए कि जो फ्यूचर में इसका यूजफुलनेस है, जॉब पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं उनको करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जब यहाँ आते हैं तो अपने कल्चर से जुड़े रहना चाहिए, उसके लिए चाहे सांस्कृतिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं या उन पर जुड़े रहना चाहिए। उसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा जो इन लोगों के और लोगों के
1: मल्टी कल्चरल
0: उसके ऑर्गेनाइजेशन उनमें भी जुड़ना चाहिए, और उससे उनको फ़ायदा क्या मिलेगा, नेटवर्किंग मिलेगी और फिर उस तरीके से उनको फायदा हो सकता है ना कि जॉब वगैरह में पॉसिबिलिटीज हो।
1: अब जैसे राजन है वो हर एक कम्युनिटी में जाते हैं, हर एक कम्युनिटी में जाते हैं, क्योंकि मल्टी कल्चरल के वो बने हैं ना सामिया का, तो उससे उनको कोई भी कंट्री के लोग हैं वहाँ पे वो जाते हैं और उनसे वो मिलते हैं और जुलते हैं, तो उससे अच्छा रिलेशन बनता है।
0: इसी चीज़ उनको लोगों को यह ध्यान में रखनी चाहिए, जो बच्चे आते हैं अपने इंडिया से किसी भी प्लेस से आएँ, छोटे से प्लेस से भी आएँ, अगर मैं एक छोटे प्लेस से आके यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट बन सकता हूँ और मल्टी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो आई एम प्री श्योर आजकल वो विकसित भारत से आ रहे हैं ना, दे कैन कम विद द बेटर नॉलेज एंड दे कैन डू इट नाइसली।
1: बहुत अच्छा आपने सलाह दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम करते हैं कि बहुत युवा कहते हैं कि विदेश जाकर ही सफलता मिलेगी, और आप एक लेखक हैं और वैज्ञानिक हैं और भारतीय के तौर पर भी यह सोच कैसे बता सकते हैं कि कैसे देखते हैं, क्या ये सही हो देखते हैं?
0: मुझे नहीं लगता है दिस इज़ द राइट स्टेटमेंट, जैसे कि फॉरेन जाके ही आप कर सकते हो, इंडिया में एक से एक लोग सक्सेसफुल लोग हैं, बट सफलता की परिभाषाएं सबके लिए अलग अलग है ना।
1: आप परिश्रम कितना करते हो, किस लिए
0: ड्यूटी करते हो यहाँ पे आकर के, जैसे जैसे मैं हूँ, जैसे कई लोग इसी में खुश होते हैं कि जैसे जैसे अगर वो कई जगहों पे फॉरेन में और घूमते आते हैं ना, तो घूमने जाते हैं तो उनके लिए सफलता की बात होती है। मुझे लगता है कि जैसे इंडिया मल्टीपल टाइम जाना मेरे लिए वो सफलता की बात होती है, मुझे अपनी माँ से मिलने जाने के लिए वो सफलता की बात लगती है ना, लेकिन करियर के लिए जो उनको करना है वो तो वो करेंगे, बट अगेन आई विल रिपीट दिस थिंग कि फॉरेन में आ जाना ही सफलता नहीं है, यू कैन स्ट्रगल हियर इफ़ यू डोंट टेक द राइट डिसीजंस।
1: करेक्ट, बिल्कुल आपने सही बताया। तो अब ये कह रहे हैं कि श्रोताओं का सवाल है, हमारा नहीं है। वो कह रहे हैं भाई कि विदेश में रहकर हिंदू धर्म और त्योहारों को कैसे जीवित रखा जाए, इस पर क्या कहना है आपका?
0: उनको सबसे पहले जो हमारे श्रोतागण जो सुन रहे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि हमारी बुक को पढ़ें, उसमें एक चैप्टर है कल्चरल क्रॉस ओवर, आप उसको पढ़ें, और उसमें मैंने मल्टीपल तरीकों से अपने बच्चों को कैसे ब्रिंग अप किया है, दिस इज़ व्हाट दे वांट टू नो, और उस तरीके से हिंदू धर्म को या उनका जो भी धर्म है उसके लिए उनको बहुत सारी सीख मिलेंगी। मैंने तो हिंदू धर्म के लिए दिवाली क्या है बहुत सारी चीज़ें लिखी जो हमने बच्चों को कराया है अपने ना, जो जैसे हमने
1: और औरों के भी धर्मों का आप देखिए पढ़िए, हमारे घर में खुद है, बाइबल भी है, हमारा पोता भी बाइबल भी कुरान भी सब कुछ पढ़िए, गुरु ग्रंथ भी पढ़िए, ताकि आपको नॉलेज होगा कि क्या है।
0: एग्जैक्टली, जैसे जैसे
1: पढ़ना बुरी बात नहीं है,
0: जैसे आप करते हैं जैसे सेलिब्रेशन करते हैं दिवाली का ना, दिवाली सेलिब्रेशन करते हैं और आप इतनी लाइट लगाते हैं ना, और उसको अगर क्रिसमस तक लगे ही रहने दें तो आपका घर भी अच्छा लगेगा।
1: जैसे क्रिसमस लगाते ही हम लोग,
0: हाँ तो क्रिसमस में तो
1: ये भारत की सबसे बड़ी बड़ाई है कि जितना और कंट्री में नहीं सजाया जाता उतना हमारे भारत में सजाया जाता है।
0: एग्जैक्टली,
1: उतना हमारे वहाँ मनाया, तो हम लोग जैसा जो अगर कहा जाए तो लिबरल हम जितना है ना उतना और कोई नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। हम देखिए, हम मस्जिद में भी गए हैं, हम चर्च में यहाँ भी जाते हैं चर्च में, हर जगह, और हर एक के त्योहार मनाते हैं और हर एक के फेस्टिवल में जाते हैं, तो हमें कैसे कोई कहता है कि हम स्ट्रांग हैं, हम तो लिबरल है भाई,
0: बिल्कुल
1: हम तो हर एक की इज्जत करते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो अब देखिए, बहुत हो गई ये सब बातें है ना, तो इस पर लिखते समय आप सबसे भावुक रात कौन सी थी जब आप खुद रो पड़े थे?
0: जैसे जब इसके लिखने की बात आती थी, स्टोरीज अर्ली स्टेज में जब मैं एक स्टोरी लिख रहा था ना, जब मैं स्टूडेंट था और पैसे की शॉर्टेज हो जाती थी ना, मतलब किसान घर का था तो सैलरी तो आती नहीं वहाँ पे, पैसा मिलता था हमको जितने रुपए मिलते थे 100 रुपीज़ मिलते थे, लेकिन वो शॉर्ट पर हो जाते थे। एंड एक बार पिताजी से तो कहीं नहीं मिलता था। मैं माता अपनी माँ के पास गया, हमने कहा अम्मा इससे काम चलता नहीं है पैसे से। तो वो खाना बना रही थी और रोटी सेक रही थी, उन्होंने अपने हाथ ऐसे झाड़े और अपनी जो पायल निकाल करके दे दी हमको ना। तो फिर जो है हमने कहा कि मैं लूँगा तो कुछ ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैंने उसको लाया और बेच दिया उसको, लेकिन उसको बैंक में डाल दिया, इसलिए क्योंकि गांव में तो काम चल जाता था तो, लेकिन यहाँ पे जो है मुश्किल होता था। तो वो सबसे भावुक मोमेंट था ना। उसके बाद तो मैं उनको कहता हूँ कि जितना सोना पहनना है पहन लो, जितना चांदी, तो अब वो जिनको पहनना होता है वो करती हैं। और उसके उसमें माँ के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जब भी मैं जाता हूँ तो जब मैं जाता हूँ तभी उनका बर्थडे होता है, तभी मनाता हूँ उनका बर्थडे अच्छी तरह
1: से। ये बहुत अच्छा किया आपने। तो चलिए, तो बहुत अच्छा आपने बताया। और सच में साहित्य में आपकी प्रेरणा कौन है, और अगली किताब किस विषय पर आ रही है, क्या आप दूसरे किताब की भी तैयारी कर रहे हैं, और क्या उसमें भी कोई प्रवासी जीवन के बारे में लिखेंगे?
0: ये तो दिस इज़ वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर आप देखें तो मैंने उस किताब को लिखना शुरू कर दिया था ऑलरेडी। तो यस, मैंने ऑलरेडी लिखना शुरू कर दिया है, और वो भी प्रवासी जीवन से रिलेटेड होंगी स्टोरीज उसमें। और अभी थोड़ा मैं इस बुक में हिंदी ट्रांसलेशन में बिजी हूँ, और उसके बाद जो है उस पर फोकस करूँगा।
1: अंत में हमारे लाखों श्रोताओं के लिए, खासकर उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे विदेश में हैं, और उन युवाओं के लिए जो जानने वाले हैं, आपका एक संदेश बता दीजिए, बस शॉर्ट में करते हैं।
0: देखो शॉर्ट में, अगर इंडिया में हैं, आ रहे हैं, माता पिता को ये सोचना चाहिए कि अपने बच्चे को भेज रहे हैं, उनको लिबर्टी दीजिए, नंबर एक चीज़ है। और दूसरी चीज़, जो बच्चे यहाँ आ जाते हैं उनको, जैसे मैं पहले भी अभी टॉक के समय मैंने कहा कि उनको अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, माँ बाप से कनेक्ट रहना चाहिए, यहाँ पर जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें वो जाना चाहें उसमें कनेक्ट हो सकते हैं, बट द सेम टाइम अपनी एजुकेशन फोकस करना चाहिए, और अपने जो ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस,
1: मल्टीकल्चर,
0: उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए,
1: सबसे मिलजुल कर रहो, सबसे मिलजुल कर रहो, सबके रिस्पेक्ट करो। तो हम बस ये तो हो गई बहुत सारी बातें, लेकिन हमारा टाइम बहुत कम है, तो श्रोताओं से मैं अनुरोध करती हूँ कि अगर आप भी और कुछ भी जानना चाहते हैं कि कैसे हमारा भारतीय दुनिया में अलग पहचान बना रहा है, और एक किताब जरूर पढ़ें। डॉक्टर प्रेम द्विवेदी जी, आप अपना अमूल्य समय देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और बहुत अच्छा लगा कि आप से हमारी थोड़ी सी बातचीत हुई यहाँ पर। तो नमस्कार है, फिर मिलते हैं अगले संवाद में।
0: थैंक यू।
1: एक किताब अमेजन और बड़ी बड़ी दुकानों पे भी उपलब्ध है, तो आप आशा करते हैं कि सभी श्रोताओं को ये चर्चा लाभदायक हुई होगी। अब समय समाप्त हो रहा है, आप सभी से विदा लेने की अनुमति चाहती हूँ। मैं हूँ दयावती पांडे, मल्टीकल्चर हिंदू संगम चैनल पर सुन रहे हैं। अगेन थैंक्स फॉर MCCA फॉर गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी। आप लोग बच्चों को हिंदी और गुजराती और संस्कृत अपनी अपनी भाषा जरूर सिखाएं, और हम आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि अपनी बच्चे को अपनी मातृभाषा सिखाना जरूरी है, ताकि वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने परिवार के साथ संवाद करते रहें, और जड़ों से जुड़कर अपने परिवार के एक दूसरे के प्रति प्रेम महसूस कर सकें। तो धन्यवाद, समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम। अगले महीने फिर मिलते हैं आपसे।
2: You're listening to 5 EBI FM on 3.1 EBI World in Digital. 3:00, time for the bounce that counts.